अमृत हो बन जाएगा, तेरी भावना सकारात्मक हो जाएगी, शुद्ध भाव हो जाएगा। कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंद सबोदस्वं सुखं चर। अरे भाई तुम आनंद से बने हुए हो यार, क्या तुम किस चीज को लेके तुम परेशान है? ये सब भौतिक प्रोजेक्टर के पीछे बैठा हुआ आदमी सिनेमा के लिए, सिनेमा जो दिखाता है वो पर्दे में प्रोजेक्टर से चित्र चलता है, मगर जो पर्दे वो प्रोजेक्टर के पीछे जो आदमी बैठा रहता है उसके लिए ये सिर्फ सब एक ही रोशनी पड़ रही है पर्दे पर। अब वो रोशनी वो फिल्म के जरिए पर्दे पर जा रही है, फिल्म में जो भी है वो सब एक ही है उसके लिए। एक अच्छा निर्देशक के लिए रावण भी राम भी, जो भी अच्छा करता है उसका स्वभाव उसका व्यवहार उनके साथ एक ही होता है। उनसे उनका मतलब है सब अपने अपने पात्र अच्छे से करें। जब हम एक बार कनाडा गए थे वहां भारत का स्वतंत्र दिवस कम मनाने का एक रहा था, और भारतीय मूल के एक महिला ने रामायण का एक दृश्य के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी, छोटी सा एक छोटा सा समुदाय था भारतीय समुदाय, कोई 100 फैम परिवार होंगे वहां के, तो बच्चों को सबको लेकर के इनको ट्रेनिंग दे रही थी। पर वो हमारे पास गुरुजी बहुत बड़ी मुसीबत है, क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चे को रावण का पात्र नहीं कराने दे रहे? रामायण का जब वहां हमने देखा मुझे ताजुब है, जो राम है वो बिल्कुल जिस रावण जैसा है, हड्डे कट्टे काला मोटा सा रावण का पात्र कह रहा, वो बिल्कुल दुबला पतला कोमल। बिल्कुल छोटा सा लड़का सद का। उस महिला ने कहा, मैंने उसे पूछा भाई ये क्या है, तुमने ऐसे पात्र क्यों चुना? बोले गुरुजी मैं क्या बताऊं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को रावण कुंभकर्ण नहीं बनने देना चाहते थे, फिर मैंने अपने ही लड़के को बनवाया। ये तो सिर्फ रामलीला है, पात्र करने में भी लोगों को दिक्कत होती है। इतना तादाद हमने अपने आप से जोड़ लिया, एक वस्तु से व्यक्ति से परिस्थिति से तादाद कर लिया, पात्र से तादाद कर लिया कि तेरी भाई जाके देखो तुम आनंदम परमानंद, तुम आनंद स्वरूप हो, अणु परमाणुओं से बना हुआ यहां सब, ये चीनी का ही शेर है, चीनी का ही बिल्ली भी चीनी का है, चूहा भी चीनी का है, जो भी ये सब चीनी के खिलौने हैं, ये सब मिठाई में बनाते हैं ना अलग अलग तरह से, बनी एक ही चीज से। तो बिस्कुट में वो बच्चे का खाते ना एनिमल बिस्किट्स होते हैं, जानवरों के बिस्किट, मैं बिल्ली खा रहा हूं, मैं ऊंट खा रहा हूं, हाथी खा रहा हूं, तो कुछ भी खाओ एक

0: stupid. बनी सब कुछ एक ही चीज से, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शाकाहारी तो मैं मांसाहार करने लग जाऊं, सब एक ही चीज, सब आनंदम परमानंदम, ये बेईमानी हो नहीं। फिर ये भी कहना पड़ेगा सुख आए दुख आए वो भी सब एक ही है, कि शुद्ध ज्ञान और व्यवहार ये दोनों को साथ साथ लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ व्यवहार में ही उलझे रहोगे कि जीवन का लक्ष्य गुम हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान ही जीवन का लक्ष्य और उसको जीवन में विनियोग उपयोग अपने आप होने लगता है।
1: आदरणीय श्रोता, आजको लागि द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृतधारा यति नै।

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। इस लोकप्रिय प्रसारण संस्था FM अध्यात्म ज्योति मार्फत व्यवसाय वस्तु एवं सेवाको विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 98 41 28 98 41 28 90

0: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
0: अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: नेपाल टेलिकम को फाइबर इंटरनेट नया चढ़ान करना तथा मरमत करना घरमै बसी बसी 198 डायल गरे पुग्छ।
1: नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संचार।

कृष्ण अर्जुन से अपने परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को दोबारा सुनने को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम रखते हैं और ये रहस्य और प्रभाव युक्त वचन वो उसके हित के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन दोबारा क्यों? दोस्तों, परीक्षा से पहले अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए ये जरूरी नहीं। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है। और फिर ये तो श्री कृष्ण के वचन है जिनसे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं, तो इन बातों को तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आया तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे।

कृष्ण के पैदा होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन, और इसके पीछे वजह है, कृष्ण सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों के भी आदि कारण है। कृष्ण का कहना है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म अलौकिक है, हमारी इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण की उत्पत्ति को, कृष्ण के प्रकट होने को, कृष्ण के देव भाव को, उनके परम तत्व को समझ नहीं सकते। कृष्ण तो उनके भी आदि कारण हैं।

0: कृष्ण अजन्मा है, यानी कि जन्म से रहित अनादि है। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, और जो ये बात जानता है कि कृष्ण ही लोगों का महान ईश्वर तत्व है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण यहां पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोहरा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं ताकि समझने में कोई चूक ना हो। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, ये जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है।
1: बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः।

जीवन में हर स्थिति अपने साथ एक नया ही भाव लेके आती है। जैसी सिचुएशन होती है ना दोस्तों, उसी तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है। इन सब भावों के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, इंद्रियादि को तपा कर जब शुद्ध किया जाता है तो उसे ही तप कहते हैं। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के जितने भी भाव हैं ये मुझसे ही होते हैं, यानी हमारे हर भाव के कारण कृष्ण ही हैं।

हम सब के होने से पहले दुनिया में कुछ और था, उसी को बताते हुए कृष्ण कहते हैं, वो थे सात महर्षि जन। इन सात महर्षि जन से भी पहले थे चार सनकादि, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्वयंभूव आदि 14 मनु ये सब के सब कृष्ण के संकल्प से ही उत्पन्न हुए। कृष्ण की ही प्रेरणा से ये सब पैदा हुआ। इन्हीं सब की संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा हैं। हमारे आने से पहले ये सब थे और इनकी होने की वजह थे कृष्ण। जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब दोबारा सब कुछ की उत्पत्ति के लिए भी कृष्ण ही होंगे। दोस्तों,

क्यों है ये दुनिया, कैसे बनी ये दुनिया, ये सबसे स्वाभाविक सवाल है जो सोचने वाले के मन में आते ही हैं। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ये योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? जो कुछ है वो सिर्फ दृश्य मात्र संसार है, सब भगवान की माया है। और एक कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है, जो हर किसी में है। बस ये जानना ही तत्व को जानना है दोस्तों। जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है।

इस जगत में जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उससे हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। लेकिन कहां से आते हैं ये भाव? कभी सोचा है ये आपने? कुछ पाने का, कुछ छोड़ने का मन करता है। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। हम जो भी कोशिश करते हैं, हमारे सारे भाव, हमारी हर चेष्टा के पीछे कृष्ण है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर को निरंतर भजेंगे तो कैसे भाव आएंगे आपके मन में? जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन में बुरे भाव आएं।

मदगत प्राणा अर्थात उस ईश्वर के लिए जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। कृष्ण में मन लगाने वाले और उन्हीं में अपने प्राणों को अर्पण करने वाले आपस में जब कृष्ण या परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सत्संग या हर सुबह और शाम की आरती को बहुत महान बताया गया है। जब सच्चे मन से कृष्ण को मानने वाले आपस में कृष्ण का कथन करते हैं तो वो हर तरह से कृष्ण में ही रमण करते हैं, कृष्ण में ही रहते हैं और फिर एक दिन उसी को प्राप्त भी होते हैं।

दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हैं, किसी कैंप में अपनी विशेष ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो क्या होता है? दिन रात आप अपने ही जैसे एक विद्या को साधने वाले बहुत सारे लोग आपस में अपने चुने हुए विषय या खेल के बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातों को समझते हैं और एक दूसरे को ठीक भी करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। सत्संग और परमेश्वर की साधना भी तो वही है। योग और क्या है? जब निरंतर उसके ध्यान में लगे रहेंगे, तभी तो तत्वज्ञान रूप योग की प्राप्ति होगी। जिस दिन योग प्राप्त हो गया दोस्तों, तो समझिए सब कुछ हो गया।

जिसने हमारे ऊपर कृपा करनी है वो तो असल में हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, न काबे में न कैलाश में। हमारे अंदर रह के वो हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करता है। लेकिन ये सब अपने आप तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो चेष्टा हमको भी करनी होगी। सिर्फ सच्चे मन से उसके बारे में सोचना होगा, सच्चे मन से अपना कर्म अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ना होगा। हमारे ऐसा करने के बाद सारा काम उसी का है। परमेश्वर ना तो हमारे कर्म और ना ही हमारे योग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे, इसी तरह से वो हमें मुक्ति देंगे।

अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था। युद्ध के बीचों बीच बैठ उसने लड़ने से मना कर दिया था, इसीलिए कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि शायद अब उसे कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आ रहा है। समय लगता है दोस्तों, लेकिन अगर आप अपने सारथी, अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु की बातें ध्यान से सुने तो ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र बताते हुए कहते हैं, आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं।

अर्जुन को अब जब कृष्ण का असली रूप समझ में आ रहा है तो वो उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो कृष्ण ने कही थी। अभ्यास का दोहराना लेसन सीखने की एक बहुत बड़ी क्रिया है ना। याद करिए वो दिन जब परीक्षा से पहले न जाने कितने ही बार दोहरा दोहरा के आप ये सुनिश्चित करते थे कि परीक्षा के दिन आपको सब कुछ भली भांति याद हो। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही।

अर्जुन, कृष्ण को भूतों को उत्पन्न करने वाले कह रहे हैं। भूत अर्थात जो भी हमें दिखता है, ये सारी दुनिया, ये सब उसी की सृष्टि है, वही इन भूतों का ईश्वर है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। दोस्तों, इस बात को दोबारा सुनिए, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कृष्ण हमारे अंदर होते हैं और हमारे अंदर रहते हुए ही वो हमारे अंदर वो भाव जगाते हैं जिससे हम कृष्ण के असली रूप को जान सकें। तो ये तो वही बात हुई कि अपने से अपने को जानना।

ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। जो जानना चाहता है वो कभी रुकता नहीं, उसे और जानना होता है। ऐसे ही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान अभी अर्जुन के लिए बाकी था, उसका संशय खत्म होना शुरू हुआ था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसीलिए वो कृष्ण से कहते हैं, आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन कृष्ण से उनकी विशेषता, उनकी खासियत जानना चाहता है, और वो ये भी जानता है कि अपनी विशेषता के बारे में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही कह सकते हैं और कोई नहीं।

अर्जुन अपने सवाल को बढ़ाते हुए पूछ रहा है कि वो किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ कृष्ण को जाने और किन किन भावों से कृष्ण उसके द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, कैसे वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करे और वो कौन से भाव हैं जिनसे वो कृष्ण के बारे में सोचे। अर्जुन की इस पिपासा जिज्ञासा से हमें यह सीखना चाहिए दोस्तों कि जब तक कि ज्ञान पूरा न मिल जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह की निष्ठा, इसी तरह की तन्मयता यानी कि लगन आपको अपने क्षेत्र में बेस्ट बनाती है या वर्ल्ड चैंपियन बनाती है।

अर्जुन कृष्ण की योग शक्ति विभूति के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है। कृष्ण के वचन सुन अर्जुन के विषाद से भरे मन को आराम मिल रहा था। वो उनकी बातें और सुनना चाहता था। उसको अभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। ये पहचान थी दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर की। वो रुकता नहीं था जब तक कि अपने अभ्यास में, अपने काम में सर्वश्रेष्ठ, दी बेस्ट न हो जाता। दोस्तों, आप अपने जीवन में कब संतुष्ट होते हैं? एवरेज होके या दी बेस्ट होके?

अर्जुन कृष्ण का विस्तार, उनकी सीमा जानना चाहता है। कृष्ण सादगी से कहते हैं, तू मेरी विभूति, मेरी विशेषता के बारे में सुन, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं। दोस्तों, कृष्ण की क्या सीमा है? वो कहां तक जाते हैं? वो हम लोगों के लिए या अर्जुन के लिए ये जानना संभव है क्या? ना, ये संभव नहीं है दोस्तों। जो अनादि और अनंत है, यानी कि जिसका कोई आरंभ ही नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, विदाउट बिगिनिंग और एन एंड, उसके विस्तार को आप कैसे समझोगे? हां, लेकिन जरूरी है कृष्ण के स्वरूप को समझना, और वही बात स्वयं कृष्ण समझा रहे हैं।

0: कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। हमारे अंदर जो आत्मा स्थित है, जिससे हमको मिलना है, जिसको हमें जानना है, वो कृष्ण ही है। हमारी शुरुआत, मध्य और आखिरी पड़ाव भी कृष्ण ही है। कई बार जब हम कुछ करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि ये सही है या ये गलत है। कौन होता है वो जो आपको ये बताता है? हमारी अंतरात्मा यानी कृष्ण, जो अपने अंदर की इस आवाज को निरंतर सुनने लगते हैं, उनकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। दोस्तों,
1: आदरणीय श्रोता, यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता गीता ज्ञान। अब एकैछिन समयतर्फ ध्यान दिउँ। यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 8:30 भएको छ र अब एकैछिन व्यावसायिक सन्देशहरू।

सिर्फ बातों की परिभाषा न समझिए दोस्तों, उनमें छुपा तत्व, उसके अंदर की गहरी बात को समझिए। जितनी भी ज्योतियां हैं उनमें जो सूर्य है वो कृष्ण है। क्या आप और किसी ज्योति को जानते हैं जो सूर्य से अधिक तेज हो?

कृष्ण अपने को वेदों में सामवेद बताते हैं। चारों वेदों में कृष्ण ने खुद को सामवेद बताया है। जितने भी देव हैं उनमें वो इंद्र हैं। हमारी जो पांच इंद्रियां हैं उनमें कृष्ण मन हैं। मन को जीत लेने पर इंद्रियों को वश में करना मुश्किल नहीं होता, इसीलिए कृष्ण हमेशा मन पर विजय पाने की बात करते हैं। और जितने भी प्राणियों की जो चेतना है, यानी कि उनकी जीवन शक्ति, वो शक्ति जो उनमें संचार करती है, जिसकी वजह से हम सारे प्राणी जिंदा हैं, वो चेतना कृष्ण ही हैं। जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारी चेतना चली जाती है, तो समझिए कि हम में से कृष्ण निकल गए हैं।

ऋग्वेद में रुद्र को बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहा गया है। ऐसे एकादश रुद्र होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। रुद्र देवता को दुष्टों को दंड देने वाला, रोगों का निवारण करने वाला, महावीर और सभा का अध्यक्ष कहा गया है। ऐसे रुद्रों में कृष्ण शंकर है और यक्ष तथा राक्षसों में कृष्ण ने अपने आप को धन का स्वामी कुबेर कहा है। आठ वसुओं में कृष्ण अग्नि है और शिखर वाले पर्वतों में जो सुमेरु पर्वत हैं वो कृष्ण ही हैं। किसी भी वस्तु या प्राण की जो परिपक्वता है वो कृष्ण है।

पुरोहित यानी कि धार्मिक कृत्य करने वाला। कृष्ण कहते हैं कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान, अर्थात जितने भी धार्मिक काम करने वाले पुरोहित हैं उनमें जो मुखिया है यानी कि बृहस्पति वो कृष्ण है। बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी भी कहा जाता है, मतलब कि जितने भी प्रार्थना करने वाले हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति श्री कृष्ण ही हैं। उसके आगे कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। जितने भी पूरे विश्व में जलाशय हैं उनमें समुद्र यानी कि ओशन कृष्ण है, क्योंकि समुद्र से बड़ा जलाशय संभव नहीं है दोस्तों।

सात महाऋषियों में से एक थे ऋषि भृगु, ज्योतिष के विद्वान जिन्होंने भृगु संहिता की रचना भी की थी। कृष्ण कहते हैं कि महर्षियों में वो भृगु हैं। ऐसा कहा जाता है कि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अर्थात माइंड बॉर्न, वो पुत्र जो ब्रह्मा के मानस से निकले थे। भृगु ऋषि के वंशजों को ही भार्गव भी कहा जाता है। इसके आगे कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार

ओंकार वो ब्रह्मांड विस्फोट बिग बैंग के समय निकला आदि शब्द है, वो ओंकार कृष्ण है। सब प्रकार के यज्ञों में कृष्ण जप यज्ञ है और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ है। जो हमेशा तटस्थ रहता है वो हिमालय है और वही हिमालय

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

जितने भी वृक्ष हैं उनमें से कृष्ण ने अपने आप को अश्वत्थ कहा है। अश्वत्थ यानी कि पीपल। पीपल की संज्ञा को खुद से कृष्ण ने इसलिए जोड़ा क्योंकि इससे वो ये समझाना चाहते हैं कि ऊपर परमात्मा जिसका मूल है और नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और जिसकी शाखाएं नीचे हैं, नीचे प्रकृति और ऊपर परमात्मा। इसीलिए सब वृक्षों में कृष्ण अपने को पीपल का वृक्ष कहते हैं। देवर्षियों में कृष्ण नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि कृष्ण ही हैं।

कृष्ण अपने को घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा बताते हैं। घोड़ा गति का प्रतीक है दोस्तों। आत्मा के तत्व को पकड़ने के लिए मन जब गति पकड़ता है तो वो घोड़ा है, और वो घोड़ा जो अमृत के साथ जन्मा वो श्रेष्ठ है। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है लेकिन आत्मा अजर अमर है, यानी अमृत स्वरूप। दोस्तों, श्रेष्ठ हाथियों में कृष्ण एरावत नामक हाथी है, और मनुष्यों में जो राजा है वो कृष्ण है। हर एक अवस्था या वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वही कृष्ण है।

दोस्तों, आपने बहुत बड़े बड़े वेपन्स देखे होंगे युद्धों में या फिल्म्स में। पुराने समय में एक शस्त्र होता था वज्र, जिससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता था। यह वज्र दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना था, इसलिए यह श्रेष्ठ था। सब शस्त्रों में कृष्ण ही वज्र हैं। गौओं में अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं कामधेनु। पुरुष और नारी अगर साथ नहीं आएंगे तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी, और जब शास्त्र द्वारा बताई गई रीति से संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस संतान को उत्तम बताया जाता है। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति

और जब शास्त्र द्वारा बताई गई रीति से संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस संतान को उत्तम बताया जाता है। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति में मैं शेष नाग हूं। शेष नाग वो नाग है जिसके हजार फन होते हैं, इसीलिए इन्हें अनंत शेष नाग कहा जाता है। विष्णु भगवान इसी पर विराजमान होकर के सोते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि हमारी धरती को शेष नाग ने ही धारण किया हुआ है। जलचरों में कृष्ण अधिपति वरुण देवता है और पितरों में अर्यमा नामक पितर है, तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं ऐसा कृष्ण कहते हैं। जीवन के हर क्षेत्र से कोई ना कोई एक उदाहरण चुन लीजिए, उसकी विशेषता और श्रेष्ठता में आपको कृष्ण ही नजर आएंगे। यही बात हमें कृष्ण समझा रहे हैं कि वे क्या हैं।

दैत्यों में कृष्ण प्रह्लाद हैं, वही प्रह्लाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था। लाखों कोशिशों के बावजूद जिसे हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया था। कृष्ण आगे कहते हैं कि गणना करने वालों का समय वो ही है, क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वो कृष्ण ही है। दोस्तों जरा सोचिए, जब समय बीतता है तो क्या होता है? समय को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या कर पाएंगे आप? क्या चीज है समय? हर पल हर समय जो बीत रहा है लेकिन उसे समझाना या समझना बहुत ही मुश्किल है, और वही समय कृष्ण है। पशुओं में कृष्ण सिंह है और पक्षियों में वो गरुड़ है।

यज्ञ से सारा माहौल, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी पवित्र करने वाली वायु कृष्ण हैं। वायु के बिना जीवित रहना असंभव है। बुरे से बुरे प्रदूषण से जब वातावरण बिगड़ जाता है, तब शुद्ध वायु ही उसको पवित्र करके सांस लेने लायक बनती है, और ये वायु कृष्ण हैं। जो शस्त्र उठाते हैं, युद्ध करते हैं, उनमें कृष्ण श्री राम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम, रावण का वध कर धर्म की स्थापना करने वाले राम, मछलियों में कृष्ण मगरमच्छ हैं, और नदियों में कृष्ण श्री भागीरथी की गंगा जी हैं। भागीरथ ऋषि के तप से जो गंगा धरती पर आई थी और जिसे शिव ने अपनी जटाओं में समाहित किया था, वही पवित्र गंगा कृष्ण हैं।

हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। सृष्टि जहां से शुरू हुई, अभी जो चल रही है, यानी कि मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, यानी कि अंत, ये तीनों अवस्थाएं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूं। हर विषय की अलग विद्या होती है। आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, यानी कि वो विद्या जो हमारी आत्मा का द्वार आध्यात्म की तरफ खोले, जिससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो, वो कृष्ण हैं।

हर एक भाषा के वर्णाक्षर यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं दोस्तों। और कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार का अर्थ है अक्षर, यानी कि हमारी वर्णमाला जहां से शुरू होती है वो अ। कहीं यही वो पहला अक्षर तो नहीं जो कोई शिशु सबसे पहले अपने मुंह से निकालता है। कृष्ण कहते हैं कि समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूं। द्वंद्व समास यानी कि वो समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं।

0: कृष्ण अपने बारे में ही विभूतियां बताते हुए कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं। जब कोई पैदा होता है तो उसका कारण वजह है, कृष्ण है। जिस भी किसी का जन्म हो रहा है उसकी वजह है, कृष्ण को ही माने। और फिर जब देह का समय पूरा हो जाता है, जब समय हो जाता है आत्मा के शरीर को बदलने का, तो मृत्यु भी कृष्ण ही है। स्त्रियों में कीर्ति यानी कि ग्लोरी दोस्तों, श्री यानी कि सम्मान, वाक यानी कि बोलना, स्मृति मेधा यानी कि इंटेलेक्ट, धृति यानी कि बराबरी और क्षमा मैं ही।
1: आदरणीय श्रोता, आज को लागि कार्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता गीता ज्ञान यति नै।

की नजर तो मानते तुम हमको अगर इस हाल में पहचानते तो हम आपकी बाकी नजर को मानते। मेरा फसाना पता या ठिकाना अगर

0: सुन पे जाना,
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
0: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौसी बोलो मौसी, मौसी बोलो मौसी, मौसी बोलो
1: बाबू आना, सुनते जाना।
0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।

0: दुल्हन से डोलना, सजरा लगा के गोरे बन के दुल्हन से डोलना।
1: तगमा लगा के बबुआ तुम कुकड़ू को बोलना, तगमा लगा के बबुआ तुम कुकड़ू को बोलना।
2: हे हे हे हे हे हे हे
0: ले लो ये खंजर बाबू से खुरवानी, ले लो ये खंजर बाबू से खुरवानी,
1: ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा ए जा जा जामू धो गया, तू जा जा अरे जा जा जामू धो

0: जंगल की बूटी खाके पत्थर भी तोड़ना, ले लो जंगल की बूटी खाके पत्थर भी तोड़ना।
1: ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन भी जोड़ना, ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन भी जोड़ना।
0: लड़की पहाड़ी है काटे की लाला,
1: लड़के के भेजे में गड़बड़ घोटाला।
0: अरे जा जा
1: तू जा जा, अरे जा जा जाके घास का बाबू आना तुमसे जाना।
0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका मालूम है माल इसका,
0: चोरी का है माल इसको दुकान खाना।

0: रे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूं गालियां।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियां, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियां।
0: रुक जा निकाल के मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीस जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके आलू भाजा। ए बाबू आना।

0: अब मैं चाहते हूँ।
1: अरे ये क्या कह रही हैं आप,
2: अभी और गाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
3: हाँ गाओ।
0: मैं और नहीं गा सकती।
3: गाओ,
1: आपको गाना पड़ेगा।

ये सुनरी दुनिया ऐसी कन्या किसी के घर ना होए, जो मात पिता की, अरे मात पिता की इज्जत को

तुम्हारी अम्मा तू समझे मुझे निकम्मा मैं तेरा लाडला बेटा तेरे पाँव पे लेटा मैं अपनी जान पे खेलूं कहीं फांसी न ले लूं मेरी घर हुई न शादी तू कैसे बनेगी दादी तू कैसे बनेगी दादी रहम का डाल दे पल्ला प्यार का मार दे हल्ला मुझे सेहरे बंधवाओ मुझे फेरे दिलवाओ मेरा पत्ता कटवाओ

0: जल्दी
1: फांसी का नहीं
0: घर पुत्र
1: जाए
0: घर पुत्र
1: जो करता है तो
0: घर पुत्र जो करता है तो घर पुत्र।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग। रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए।
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: अनि मलाई

0: 248.
1: FM 101.8 से 4.8 मेगाहर्ट्ज़ में यहाँ रोयले सुन्दर हुनुहुन्छ केही हिन्दी

0: हमारी शादी को कितने दिन हो गए?
1: 2 हफ्ते।
0: अब भी बताना होगा क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है।

0: अरे हा हा, अरे हो हो, अरे हे हे, अरे हा।
1: गुरु ने ठीक कहा,
0: बगड़म बगड़म बाजे ढोल, सांभर पोड़ी जाए तो अरे सांभर, अरे सांभर, अरे सांभर।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल।
4: FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

फिर आगे कोई वस्तु जैसे होंगे क्या? परमेश्वर बने उनके मुकुट होगा, बांसुरी होगी, या शंख चक्र होगा, या त्रिशूल होंगे, कैसे होंगे परमेश्वर? मूर्ति नहीं, जैसे आकाश है, एक घट के भीतर बाहर जैसे आकाश है, वैसे तेरे भीतर बाहर परमेश्वर है। परमात्मा से वियोग एक क्षण के लिए भी असंभव है। उनसे वियोग हो जाए तब तो उनका सर्व सर्वव्यापित खत्म हो जाएगा। परमात्मा जब सब जगह मौजूद है, सब जगह उनकी व्याप्ति है, तो उनसे बाहर उनके परी है क्यों? आकाश के बाहर कुछ भी नहीं है, हर चीज आकाश में ही होते हैं।

नहो नहो पाओगे। यदि कोई कुछ कहे तो तुरंत मन करता, अच्छा फिर इससे निकलने के लिए क्या करें?

करो करो बोल बोल के वो थक जाते। एक तो बोलते ये करो वो करो वो करो, मंत्र जाप करो, ये करो, यज्ञ करो, कुछ करो करो करो करो, और क्या करें करें करें करें, इस चक्कर में आके दोनों डरते रहते हैं, गुरु और शेर। अष्टावक्र ने वास्तविकता को खोल के रख दिया जनक के सामने। कृपया शिव देखो, जिस चित्त में ठहराव आ गया वहां परमेश्वर का झलक मिल गया। आशा ठहराव आने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं, सिर्फ इतना ही जानना है तेरे भीतर बाहर आकाश जैसे एक घट के भीतर भी बाहर भी जैसे आकाश है, ऐसे तेरे भीतर बाहर ब्रह्म तलाश मत करो। अपने अभी सुना, तलाश मत करो, खोजने वाले

लड़के तलाश मत करो, अपने अभी सुना ना, तलाश मत करो, खोजने वाले मानसिक शारीरिक बौद्धिक क्रिया को ही को तू खोज। हर स्तर पर तुम शांत हो जाओ।

0: कृपा करके इस प्रश्न को समझिएगा नहीं।
1: पहले तुम अपने आप को जानते क्या? मुझे जानने की चेष्टा तुम कर रहे हो, तुम तो खुद को जानते हो। तुमको खुद का ही परिचय नहीं है।

जिनके दिल में एक बार भी भक्ति का झलक मिल जाए, फिर वो चुप खोने से महसूस होने लगता।

भोजन करते वक्त दुनिया भर की गलत बातें सोच सोच के खाना खाते रहे, इन सब का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। भोजन करते वक्त भोजन नामे भगवत नाम संकीर्तन, वह कुछ अच्छी बातें सुनो, बीमारी की बात सुनते

ऐसे जब हम प्रसन्न होते भोजन इतना उतरता नहीं कर लेते, और बेचैनी होती है तो ज्यादा ज्यादा खा पड़ते हैं, इतने होश के साथ भोजन।

तेरा अनुभव है उस पर तुम्हें संशय भी हो रहा है, तब तो बिल्कुल सच है। क्योंकि सच पर ही संशय करते हैं, झूठ पर कभी कोई संशय नहीं करता। किसी की ईमानदारी पर संशय करते हैं, किसी की बेईमानी पर आज तक किसी ने कोई संशय नहीं उठाया। इसी तरह से कोई आपसे पूछते हैं तुम सुखी हो क्या, हाँ करते हो पता नहीं, कोई पूछे तुम दुखी हो, कभी नहीं पता नहीं, कभी नहीं बोलते।

चलायमान ईश्वर जगत के होने पर संशय नहीं करते, मगर जो प्रगाढ़ बुद्धि वाले होते हैं, प्रगाढ़ बुद्धि उन्हें जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिकों में

निष्क्रिय हो जाओ, मैंने इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो। अभी थोड़ा शांत हो, ये कुछ गहने की बात है। अपना जो काम है वो करते जाओ,

शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ी देर बैठ के इसका अनुभव तो करा भी कुछ नहीं करूंगा, फिर लगेगा उसको करते हुए भी मेरे भीतर एक सप्ताह जो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको समझाने के लिए उपनिषदों में ऋषियों ने बहुत सुंदर बताया, एक ही वृक्ष है उसमें दो पक्षी बैठी हुई है, एक खा रही है तो दूसरे साक्षी होकर देख रहे हैं। यहां वो पक्षी की बात कह रहे हैं जो साक्षी है जो निष्क्रिय है उसके तरफ भी ध्यान दो ये कह रहे हैं। दूसरी पक्षी तो खाती रही है, दो बात सुपर्णा सही जा सका है। जो दो पक्षी है दो सका है साथ साथ रहते

Pues lo dices tú, porque pues, si durante este tiempo que tuve, एक क्षण भी बिना कर्म के कोई टिक नहीं सकता, टह नहीं सकता। कर्म करते जाओ और कर्म के भी साक्षी बनते जाओ, ये एक पीएचडी लेवल का ऊपर की ज्ञान, थोड़ा उससे आगे का।

0: बिहान को 5 बजिसकेको छ। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को नियमित प्रसारण आरम्भ हुन्छ। प्रसारण प्रारम्भमा आजको पञ्चाङ्ग।
1: आज श्री सालिभानी साके 1948, सृष्टितो गताब्दा 1955-88 5127, कलेर गताब्दा 5127, 60 संवत्सर मध्ये 54 संवत्सर रौद्र नामक संवत्सर, नेपाल देशीय सम्बत 1146, विक्रम सम्बत 2083 साल, आषाढ़ महिनाको 26 गते शुक्रबार, तदनुसार जुलाई महिनाको 10 तारिक सन 2026, आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, भरणी नक्षत्र, सूल आनन्दादि योग, बब कर्ण, मुद्गारी योगा। आज चन्द्रमा मेष राशिमा अवस्थित, श्री सूर्य उत्तरायण। यो महिना श्री सूर्य मिथुन राशिमा अवस्थित। आज काठमाडौँमा अहिले 5:17 सूर्योदय हुनेछ। आदरणीय श्रोता, आज योगिनी एकादशी व्रत हो। शुभ प्रभात एवं नमस्कार। यो प्रभात कालिनीय कार्यक्रम आराधनामा म प्रस्तोता युवेन्द्र। अब आजको यो कार्यक्रम आराधनालाई सदा चाहिँ अगाडि बढाउँदैछु हस्त दर्शन एवं भूमि वन्दनाबाट।